रावण गए, भगवान राम आए, आलोप हो गए त्रेता युग च। उस वेले रावण भी आया, रावण भी चला गया। हुण एक गुजी रमस, एक गुजा इशारा की कर रहे हैं भाई मती दास जी नू, उस वेले की दस रहे हैं कि देख मती दास, जिस तरह भगवान राम आए अलोप हो गए त्रेते युग च, ए साखा वर्त्या, रावण भी चला गया। सात संगत जी इशारा की है, जो भगवान राम दे नाल उना दे प्यारे आए हैं, जेड़े वड्डे भागां वाले आए सन, मिसाल दे तौर ते लक्ष्मण जी, भरत जी, उन्होंने उन्हां दे आन दा सुनहरी मौके दा फायदा उठाया, कड्डा जबरदस्त फायदा उठाया, उस साखे बनी, रामायण बनी। सात संगत जी कमाल ही कमाल है, भगवान तां अपनी योग माया च आंदे हन, आर इस संसार दे विच प्रकाश फैला के इस नू रोशना के ओ अलोप हो जांदे हन योग माया विच, ओ ना कते आंदे हन ना जांदे हन, ओ एक कैदी और बंदी इंसान वक नहीं है। फिर दस की रहे कि देख मती दास, जिस तरह भगवान राम अलोप हो गए, असी भी अलोप हो जाना है, और तुम भी नहीं रहना। सात संगत जी, ये भगवान कृष्ण आए हैं ते उस वेले जो अर्जुन ने उस सुनहरी मौके का फायदा उठाया है, जो होर प्यारे भक्तों ने उन्हों का फायदा उठाया है, एक दफा हजरत ईसा लॉर्ड क्राइस्ट अपने एक भगत के घर गए, लास्ट सफर किया है। एक बीबी भगत ने आके उन्होंने चरण अतर नाल साफ किए, एक अतर की वड्डी बोतल कट्ठी की हुई सी, वो बोतल पूरी दी पूरी चरणा ते डोलती, चरणा नू चंगी तरह अपने केसा नाल पूंजिया, नाल उना दे शिष बैठे सन, जिदे विचों जूड़ा ने कहा कि गरीब नवाज, इसने बड़ी कीमती चीज जाया कर, ऐसे अमुली चीज का अगर इस पैसे नाल गरीबां नू प्रशादा छकाया जांदा, बड़े गरीबां दा पेट भरना सी। ता अगों हजरत ईसा जवाब भी दिंदे हन, कहिंदे देख जूड़ा, गरीब भी हमेशा रहेंगे, अमीर भी हमेशा रहेंगे, जेड़े उन्हां नू प्रशादा छकाण वाले अमीर है वह हमेशा रहेंगे, पर देख जूड़ा जो खेड ए बीबी खेड गई है, इस दा मन इसे तरह साफ है जदा अतर साफ है, इस दा दिल इदा ही महक रहा है जिस तरह इस वेले अतर दी सुगंधी चारों पासे फैली हुई है। पर कहन लगे वो तो रहनगे, गरीब भी रहनगे, अमीर भी रहनगे, पर असी नहीं होवांगे। जो खेड बीबी इस वेले खेड गई है, वो खेड गई है, उस सुनहरी मौके का फायदा उठा गई है। तो सात संगत जी, इस सुनहरी मौके का फायदा कोई वड्डे भागां वाला उठाता है। फिर जिस तरह भाई मती दास जी ने इस सुनहरी मौके का फायदा उठाया है, कमाल कर। सात संगत जी इशारा किया, पर पिता जी समझांदे हुए अगे दस की रहे हैं, कहन लगे देख पुत, गुरु तेग बहादुर साहब प्रवेश कथे कीते हैं, गुरु ग्रंथ साहब कलयुग के बहुत

कि नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

धरती धर्म दी हो। जिथे मेरा सतगुरु आके सज गया, जिथे मेरे सतगुरु के दर्शन प्राप्त हो जान, वो धर्मशाल हो गई, धर्म की धरती हो गई, वो शरीर धर्म की धरती हो गया, वो जीवन धर्म की धरती हो गया। उथे धर्म पुंगरेगा, धर्म वधे फुलेगा, धर्म फलेगा जिथे सतगुरु आ गया। ते सतगुरु कदों आउंदा? जदों गुरु की जुगत आ जाए, समझो गुरु आ गया। भाई साहब भाई गुरदास के जीवन च गुरु आया, ते उन्होंने जो कुछ गुरु नूं माणे, जो कुछ गुरु नूं जाणे, ओह कुछ गुरु नूं बयाने। पहला तो भाई साहब कहंदे ने कि सतगुरु एडा दयाल है कि जे गुरु वाले एक कदम भी पटीए ना, एक कदम भी नीयत धार के गुरु वाले पासे चलीए, चरण शरण गुर एक पैड़ा जाहे चल, उठ के तुर सही। जे कोई तुरे ही ना, एक कदम भी चुकन नूं तैयार ना होवे, ते भला कोई पुछे कि गुरु नूं की कान पई, उस नूं की लोड़ पई है। हालांकि कई बार वेखने आ, पता नहीं गुरु नूं कुछ लोड़ होवेगी। जे गुरु नानक वल वेखदे आ, संसार दे पापियां अपराधियां दे घरां च पहुंच पहुंच के उन्हां नूं गुरमत दृढ़ करवाउंदे फिरदे ने, कोई लोड़ होवेगी ना। पर गुरु नानक दी लोड़ की है? गुरु नानक दी लोड़ है संसार नूं जीना आ जाए। उन्हूं आप कुछ नहीं चाहिए, उन्हूं केवल यह चाहिए कि बंदे नूं अकल आ जाए, इंसान नूं होश आ जाए, इंसान जाग जाए, कि वह हलून हलून के झंझोड़ झंझोड़ के मानसिक तौर ते सुते बंदियां नूं जगाउंदे फिरदे। ते भाई साहब कहंदे ने जिस किसी ने एक कदम भी चुकिया, एक कदम का मतलब है जिसने माड़ी जी नीयत भी बनाई, जिसके मन च माड़ा जिहा किसी वेले उमा उठे, चंगे पासे तुरन वास्ते जिसने माड़ा जिहा भी मन बनाया, सतगुरु ने एकदम अगे होके उस नूं संभालिया ते तोर लिया। चरण शरण गुर एक पैंडा, पर एक कदम जिहड़ा है सिख दे हिस्से आया। पहला कदम तैनूं पुटना ही पएगा। उद्दम दा एक कदम तेरे हिस्से, करोड़ां कदम मेरा सच्चा सतगुरु तैनूं अगो आके स्वागत करके लै तुरेगा। चरण शरण गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक होर भी गल कहिंदा, कहिंदे ने एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, तू धन गुरु नानक ना कहे कोई गल नहीं, गुरु नानक नूं धन ना कहे तो इथों नहीं किया जांदा, पर गुरु नानक ने जिहड़ा तैनूं गुरमंत्र दित्ता है, गुरु नानक ने जिहड़ा एक ओंकार तैनूं बख्शिया है, गुरु नानक ने जिहड़ा तैनूं सत करतार बख्शे है, गुरु नानक ने जिहड़ा तैनूं सत नाम बख्शिया है, गुरु नानक ने जिहड़ा तैनूं वाहिगुरु कहना बख्शिया है, तू एक वारी प्यार नाल कह के तां वेख गुरु तैनूं किन्नी वारी याद करदा है। भाई साहब कहिंदे ने एक बार सतगुर मंत्र, गुरु दा दित्ता होया मंत्र एक वारी प्यार नाल याद करके वेख, सिमरन तां ही बारंबार गुर हेत है। गुरु बार बार हजार वार सिख नूं याद करदा है, कोई नहीं, जे तू मेरा दित्ता मंत्र याद कीता है ते मैं तैनूं हर समय याद रखांगा। इस्लाम वाले एक गल कहिंदे ने, वो कहंदे ने जिसले बंदा दुजानू होके गोडियां परने होके हाथ फैला के एक वारी कह देवे ना या खुदा बंदा, ते कहंदे ने खुदा अगो सत वारी कहंदा या बंदा या बंदा या बंदा या बंदा, सत वारी कहंदा। पर भाई साहब कहंदे ने नहीं, क्योंकि नेचा भाई साहब का गुरु ते बहुत ज्यादा, वो कहंदे ने नहीं सत वारी तो बहुत थोड़ा है। सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है, प्यार नाल हेत नाल गुरु बार बार हजार बार अपने सिख नूं याद रखता है, करता रहिंदा है, याद रखता है, हर समय याद रखता है। एक होर भी गल, भावनी भगत पाए कौटी अग्र भाग राखे, प्यार नाल सत्कार नाल अदब नाल भेटा दी भावना नाल एक कौडी टुटी कौडी भी लिया के गुरु चरणा ते सिख ने अर्पण कर दिती, ताहे गुर सर्व निदान दान देत है, गुरु ओदे खजाने भर दिंदा, सारे खजाने उस नूं बख्शदा। पर एक गल जरूर है, शर्त भावनी भगत पाए, जे कोई दाता ही बन के आवे कहिंदा मैं गुरुद्वारे देण चले आ, मैं गुरु नूं अर्पण करन दी बजाय कहिंदा मैं गुरु नूं देण चले आ, बहुत दाते बन जांदे, समझ नहीं ना, सुरत नहीं है। पैर पैर ते मंगता बंदा किसे वेले दाता बन के तुर पैंदा, वो भी गुरु दे दर नूं, मैं गुरुद्वारे देण चले आ, नहीं देण दा कोई थां ही नहीं है, इत्थे तां अर्पण करन दा थां है। तेरा किया तुझे क्या अर्पो, जिसकी बस्त तिस आगे राखे, मालिक तेरी दात तेरे अगे, मैं देण वाला कौन हूं, मैं तो तेरी ही चीज तेरे अगे रख के अर्पण करन वाला तो हो सकना। इस तरह पावनी भगत पाए, और कई आउंदे ने ना चला के मार दे पैसा, चला के मार दे ने रकम, सुटदे ने, इन्नी भी जाच नहीं, गुरु दर दे उते हाथ बन के, एक गुजरा लोड़वंद बैठा है तेरी माया का,
ਤੇਰੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਮ ਜਾ, ਚੁੱਕ ਜਾ, ਡੁੱਲ ਪਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ

परवरिल निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट होए ते फिर ओही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रही है ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहा। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सी गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़दे हो, असीं की करांगे। साहब कहण लगे की चाहुंदे हो कि महाराज दर्शन किदे करांगे, गल्लां किदे नाल करांगे, पूजा किसकी करांगे। साहब कहण लगे पूजा तां तुहानूं मैं पहलां ही एक अकाल दी समझा चुका, पूजा अकाल पुरख दी करनी। मेरा दर्शन करना है तां खालसे दा दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने गुरबाणी दी विचार करनी, गुरु के बचना दे अनुसारी होगे, गुरु के बचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे, गुरु नाल गल्लां करदे जापोगे। इत्थे भाई साहब कहिंदे ओही वाहिगुरू अकाल पुरख गुरु दा रूप धारण करके प्रगट होया ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तां गुरसिखां दी मन्नेगा, साध संगत दी बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दी लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नूं करन कारण समर्थ वाहिगुरू साध संगत दा करे कराए, सारा कुछ उहदे भंडारियां च भरिया पिया पर साध संगत दा दे दवाया, साध संगत जिन्हू चाहे दवा देवे, जो चाहे लै लवे। पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया, पार ब्रह्म गुरु दा रूप होकर के साध संगत विच गुर शब्द बैठा है, जिसनू लोकां ने जग भोग जोग ध्यान कर अनेकां कर्मकांडां दे नाल अनेकां जतनां दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया, किसे नूं लब्भा नहीं, किसे नूं दर्शन नसीब नहीं होए, गुरसिखां ने उहनां नूं लभ लिया, संगत विचों लभ लिया, गुरु शब्द विचों लभ लिया, और ऐसा लभिया इन्ने नेड़े हो गए, इन्ना प्यार पा लिया, इन्नी सांझ पा ली, प्यो पुत्रां वांग एकमेक हो गए। और फिर एक होर गल, वो जग भोग जोग ध्यान करने वाले तो कई बार संसार नूं छड्ड के बाहर भटकते नजर आए। गुरु का सिख संसार च रहिंदिया होए, घर बार च रहिंदिया होए, परस्पर सत्कार का अधिकारी बन के एक दूजे विच सतगुरु के दर्शन करता होया एक दूजे पैरी पैंदा नजर आउंदा, और इसे संसार च रहिंदिया होए प्रभु के प्यार नूं मानदिया गुरु के प्यार नूं मानदिया होया माया विच उदास रखाया। पर एक गल है, जे तां गुरु नाल गल्लां करनियां ने ते गुर शब्द नूं विचारांगे, जे गुरु के नजदीक होना है गुरु नाल विचार दी सांझ पाउणी है, प्यार दी सांझ पाउणी है ते गुर शब्द दी सांझ भी पाउणी पड़ेगी। लेकिन जे कदे गुरु नूं प्रसन्न करना होवे ते महाराज पावन बाणी च कहिंदे ने, साहिब कहिंदे ने गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै, जो सिखां नूं लोचै सो गुर खुशी आ, जिहड़ा गुरसिखां नूं प्यार करदा गुरु की खुशी लैंदा, विच संगत हर प्रभ वसै जी, इसे संगत च गुरसिखां विच वाहिगुरु आप वसदा, इन्हां दी खुशी गुरु की खुशी पार ब्रह्म दी खुशी। इसे करके गुरमुखां गुरसिखां सत्संगियां ने गुरु प्यार वालिया शब्द विचार वालिया नाम की कमाई वालिया की खुशी लैण दा यतन कीता सर। और भाई साहब पुन भी बड़ा कहिंदे, भाई साहब कहिंदे ने जे किते गुरसिखां दी सेवा च लग जाइए ना ते गुरु वालों बड़ियां खुशियां प्राप्त हुंदियां ने, एडा वड्डा पुन है जिहड़े उसले प्रचंड पुन्नां दीआं गल्लां सन, जिहड़े जतन लोग प्रभु प्रसन्नता दे करदे सन,

ओ लड़का पतंग उड़ांदा होया अपने साथियों दे नाल गल्लां भी करदा है, पर उहदा असली ध्यान अपनी डोर विच हुंदा है, किधरे पतंग आड़ ना जा।

कभी किसी ने राम का नाम नहीं लिया, पर ये कबीर ऐसा पैदा होया ये हर वक्त राम राम करता रहिंदा। जदू दी इन्हें माला फड़ी मैं कोई सुख नहीं दी।

जठानी सुनो दरानी अपनिया दरानिया जठानिया कबीर साहब दे माता जी कहंदे भाई सुनो इस कबीर ने मेरिया सत तानिया खराब कर दितियां ए दे नालू

मैं ओदा पुत्र ही नहीं। पोंगड़ा पुत्र नुखे है, ऐ मां तू कहनी नाम ना जाप जा मैं तेरा

बड़ा उदास रहने जेड़ा नाम तेनू हसन खेड नहीं देंदा बेटा उस नाम नू वसार क्यों नहीं देंदा तां तां गुरु नानक साहब दी अखां विच जल भर आया ते कहन लगे मां आखा जीवा

मैं परमेश्वर दे कोल नूं विछड़ के आया। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिहड़ी मैं खावां ते परमेश्वर दे नाल मेरा मेल हो जाए। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक मैनू भुख दा दुख है। मैनू घड़ी मुड़ी भुख लगती है, कादी साची नाम की लागे भूख। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिहड़ी मैं खावां ते ए मेरी नाम दी भुख मिट।

वैद ने हाथ जोड़ ले कहंदा ऐ नानक मैं ता तेनू कुछ और समझिया सी पर तू ता आप रब निकले जेड़े दुख तू दसे ने इन्हां दुखां दी दवाई मेरे कोल किथे ऐ नानक पातशाह मेरी ते कृपा कर मेरे मन नू बड़े रोग लगे ने मेरे मन दे रोग दूर

0: हमारी जेबा एक रुराम हर के गुण अगम अथार हम क्यों कर जमे इराना
1: हर तुम बड़ अगम अथार।

निर्मल निर्मल सूर्या, निर्मल निर्मल सूर्या, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथ ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथ ही सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇਕ ਛਿੰਨ ਇਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ।
मुहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे तुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई। कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदों मैं दुआ की, जदों इल्तजा की, जदों खाली ठूठा अगे किया तो उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घरां दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों नहीं? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने निमंत्रण दिता है ते इत्थे अगे आ जा, तुसी तां कहीं जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मल लिया है, तेरी दहलीज मल ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ये निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगता, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगता, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगता उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या टीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आदीठ धर्म अत टीठ करम। वाहिगुरु तों भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता, आदीठ धर्म अत टीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ हो कर दई है। आदीठ धर्म अत टीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत टीठ निश्चय ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदों तक कई बारी इनू शक्कां शकूकां दा शुभात दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चय धार लिया मोहे दूजे

विसर गया है मरण, तेनु विसर गया जिस वाहिगुरु ने संसार ते भेजिया है, उसने सदना भी है। जिस वाहिगुरु ने तेनु अमोलक स्वासा दी पूंजी, हीरे लाला तो महंगे तेरे स्वास, ते उसने हिसाब भी तो मंगना है। उना स्वासा दे लाला नाल कितने कु तू नाम दे लाला दे वर्ज कीते हन, उथे ता लेखा पुछया जाना। इसलिए सानू चेता करा रहे हन धन गुरु नानक पातशाह, कहंदे ओ विसर गया है मरना, चेता कर मालिक ने सदना तैनू।

पत सेती घर जावो। इना अमोलक हीरिया लाला तो महंगे स्वासा दे नाल जे तू नाम दा वणज करके जावेगा तां तेरी इज्जत रह आवेगी, तेरा आउना सफल हो जावेगा। जिस कारज लई मालक ने तेनू खलिया है उदी सफलता ही सिमरन विच है, नाम विच है। ऐसा ना होवे अखां नीवियां पाके तू जाके बह जावे जिवें जुआरिया हार के बह जांदे चले जुआरी दोए हाथ जा। हजूर कहंदे ने इना अमोलक श्वासां दे नाल ओ धन कठा कर जेड़ा इथे भी तेरी सहायता करे। जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावे दरगाह विच भी तेरे नाल होवे। जदों तू आया सैन तेरे कोल श्वासां दी पूंजी सी, ऐसा ना होवे तू जावे ते तेरे हाथ दोवें खाली हो, अपनी प्रतीत भी गवा के जावे। इसलिए हजूर कहंदे ने आया से श्वासां दी पूंजी लैके जा तां नाम दा धन खट के जा, फिर तेरा आना सफल है।

नाम रूपी अमृत पीते ओह ही सुचे रहे हम सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा ते जे सिमरन नहीं कीता विकारां विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नूं ही कलंकित करके जाएगा किसे माड़े पुरुष नूं संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या इसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेनू कोई कोल ना बैठ देवेगा उच्चारण करो श्री वाहेगुरु इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया श्री

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनु ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की समझांदे ने।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। एक गल

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर, दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन, ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बनियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने, इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोले।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने लकड़ा भी धो के बाल देने पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाने।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेकी संत नु पुछया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वां

समझ लिया कि मेनू थैली लुकांदे आ, नामदेव ने देख ले। पेखी संत कहन लगा, सेठ जी ओ जिड़ा नामदेव सामने बैठा सदा पिया है, तुहाडी वासली ओदे कोल है। सेठ उठिया ते भगत नामदेव दे गल पै गया, कहन लगा मेरी थैली दे। होर भी दो चार आदमी इकट्ठे हो गए ते सारे भगत नामदेव नूं कुटण लग पए। ओ जिहड़ा पेखी संत सी अपना वड्डापन दसण वास्ते अपने आसन तों उठिया, उन्हां लोकां नूं कहण लगा नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधर एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोका ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के कुटन लग

ए पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

तित्तर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जोड़ नर जाने भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तित्तर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए ने हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ असीं त्यागी पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले तां लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया उदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा तू

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है। क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन। क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिनिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री। ते भाई गुरदास जी कहंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं, जिथे पए होए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोगदे हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती। इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों

जनक जी असी गुरु नानक दे दर्शन कर सकांगे। आख्या क्यों नहीं, तू स्वास दसम द्वार ते चढ़ा लै ते असी तेनू एक मठ विच पा देंदे हैं ते धरती पुट के तेनू उस धरती विच दब देंदे हैं। जदों कलयुग आवेगा, कलयुग दा समां ते गुरु नानक निरंकार गुरु नानक बन के संसार ते आएगा ते रिखी ने आख्या मैनू मैं गुरु नानक नू किवें लब्बांगा। ता राजा जनक कहन लगा तेनू गुरु नानक लब्बण दी लोड़ नहीं, गुरु नानक आपे ही तेनू लब लेगा। ता संगत बोलो श्री ते जदों फिर समां बदलिया, कलयुग दा समां आया ते गुरु नानक जदों पंजवां गुरु नानक बनिया गुरु अर्जन देव महाराज ते जिस वेले संतोख सर जिथे अज पवित्र अमृतसर दी धरती ते संतोख सर दा सरोवर है उसकी खुदाई हो रही सी, गुरु अर्जन देव पातशाह टाली तले बैठे सन। इस गुरुद्वारे नू टाली साहब करके भी नाम प्रसिद्ध है। ते जिस वेले सरोवर दी सेवा हो रही सी तां खुदाई दे वेले जदों प्यार वाले खुदाई कर रहे सन ते ओ कई उस मठ नू जाके लगी ते सिखां ने आके बेनती कीती, गरीब निवाज कोई मठ है ते जापदा उहदे विच कोई रिखी है? साहिब गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे हां एक रिखी है जो राजे जनक दे समय तों साडे दर्शन करन वास्ते पिया है। गुरु अर्जन देव महाराज आए उस मठ नू, एक एक इट अपने हाथ नाल हटाई कि ते रिखी नू लग ना जावे ते ओ रिखी एक शरीर दा पिंजर ही रह गया सी। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपनी गोद विच उहदा सिर रखिया, मुख ते छट्टे देते जल दे, सिर ते हाथ रखिया ते रिखी ने अखां खोलियां पुछिया केड़ा समां है? तां गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे कलयुग है। कलयुग कमिया रिखी कहण लगा मैनू कलयुग दी तत्ती वाह ना लगे, मैनू बचा लो। ते फिर झट ख्याल आया ओह मैं आप ही तां कलयुग विच आउणा चाहुंदा सां कि मैं गुरु नानक दे दर्शन करां, उस निरंकार दे दर्शन करां। ते फिर कहण लगा रिखी के कलयुग विच गुरु नानक ने आउणा सी। गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां दी गोद विच रिखी दा सिर है दसम द्वार तो स्वास तले उतरे, गुरु अर्जन देव पातशाह ने सिर ते हाथ रख के स्वास उतारे ते पुछदा मैं गुरु नानक दे दर्शन करने। कोल खड़ोते बाबा बुढ़ा जी कहण लगे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज दी गोद विच ही तेरा सिर है रिखी। साथ संगत बोलो श्री। उस वेले जिस वेले रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन कीते कहण लगा सचमुच गुरु अर्जन देव ही हरि दा रूप है। तां फिर उस रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे चरणां विच विश्वास छड्ड दित्ते ते फिर जूनियां तो मुक्त होके निरंकार दे देश चला गया। ताई आख्या जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम प्यार नाल सिदक नाल परोसे नाल जपेगा प्यारी सात संगत ओ जूना तो रहत हो जावेगा। जूना ते फिर 84 लाख त्रिगड़ जूना विच ना आवेगा। ओ जो जपेगा तन गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम आ प्यार नाल जप

राग भी बिहागड़ा ही आप जी ने सरण किया है। एक बंदिश रीत जो है पुरातन मान योग सत्कार योग साडे पिता जी गायन करते ने, तो आओ इस रीत राग बिहागदी है हुणे याद आई है, आओ बड़े प्यार नाल सरवण करो।

जो इच्छे सोई फल पावे, जेड़ा ठाकुरां दी सेवा करदा है वो जो मंगदा है ठाकुर उन्हां नूं दिंदा है। ए गल पुजारी नहीं तन्ने नूं कही।

पुजारी होर गुस्से च आ गया। पुजारी कहिंदा जाओ धन्या, तैनू जू के आ जाके अपना काम कर, ये कोई मखौल थोड़ा के तैनू मंदिर विचो मूर्ति चुके दे दे। धन्ने ने बड़िया मिन्नता कीतिया पर पुजारी ना मनिया। ते धन्ना सी जट, धन्ने नू चढ़ गया गुस्सा। गुस्से च धन्ना कहन लगा देखो पंडता, हुण तक ते मैं हाथ जोड़े ने, तू मनिया नहीं, सीधी तरह एक ठाकुर दे दे जे मैनू।

के दही रिड़क के लस्सी बनाई, एक थाली विच रोटी रखी, नाले लस्सी लई ते ठाकुर दी

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ये गल कहंदे ने कि किथे रब

ओत पोत जन हर स्यो राधा। एहो जे प्यार विच बैठो चित करो ध्यान चरणा दा, बड़े प्यार ना।

0: इंसान इस गल की खोज ना कर पैदा कितों होया सा कितों पैदाइश तेरी है एक नापाक पानी के कतरे तो वजूद ऐदा का खूबसूरत बनाई बैठा है वजूद करके तू अपने शीशे मोहरे जो खलो जाता तो तेरा चेते नहीं करता हटन कदी वेख्या कर जिसने तेन खूबसूरती दिती है ओ कि खूबसूरत हो कितों तू पैदा होया बंदे खोज दिल हर रोज
1: करीमल कमाल है
0: करीमल कमाल है गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं वह कैसा है करीमल कमाल है कि हुसनल जमाल है वो खूबसूरती का मुजस्मा ही है बस दी पर यह सोचा कर कितों उपजे दूजी गल कह रहे तीसरी गल जिंदगी है नाटक जेड़ा ना इट इज जस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड यह तो खत्म होने वाला ही है और तू हाले अपना आप सवारी जांदा इसे काम ते सारा दिन वेस्ट ना कर दिया ना ना ना ना यह सवाल अपने मन ते करके कितों उपजे कह रहे कह मान समावे बंदे खोज दिल हर जो तू यह खोजेगा ढूंढेगा तलाश करेगा ना फिर परेशानी मान दुनिया में बहुत ही देर नहीं रहना मेरे आदर जो मास्टर जी ने सवेरे अरदास तो बाद अपना बचने ही इथों आरंभ किया कि संसार नाशवंत है मैनू उस वेले याद आया सुनना जी पंजाबी विच ए जग सराए मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए ए जग सराए मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए शदाद नमरूद फरून जहे बे दावा बन खुदा कहा गए अकबर शाह जहे विच दिल्ली दे जी फेरी वांग बन जा रहा पा गए शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई बजा शाह मुहम्मदा रब और रब दे वरसा है भगवान भगवंत दे वरसाए हुए अकाल पुरख दियां जोतां संभाली फिरन वाले ए महापुरश क्योंकि दो चीजा रहिंदियां संसार विच गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने

समाप्ति है शास्त्र में, पर मेरा चित करता है कि ऐ सत्रां ते तुहानू समझी आ गई, जेहन विच बैठ गई हां, तुसी कृपा करके हौली हौली इस दे नाल ही

सच दे रस्ते ते तोर के अनेकां जीवां दा उधार कीता। एथे ही बस नहीं गढ़ बगदाद जो पीरां दा गढ़ सी, उस बगदाद विच भी जाके आपने सच दा उपदेश दिता। आख्या अकाल पुरख दी लीला दा कोई अंत है? तुसी क्या ए सच मनदे हो? सत पताल ते सत आकाश हन, इस तो परे होर कुछ नहीं। बाबे ने आख्या नहीं लख पाताल आकाश लख, लखां ही आकाश हन ते एथे ही बस नहीं, फिर पता नहीं कितने को होर भी हैं। ते बाबे ने अपनी अजबत ते नाल ओ लखां पताल ते लखां आकाश अखी विखा के अकाल पुरख वाहिगुरु दी बेअंत लीला नू प्रत्यक्ष करके दिखाया। सारा बगदाद आप दे चरणा ते झुकिया, मदीने ने आप जी दे चरणा ते सजदा कीता, मक्के विच जाके सच दा राह दर्शाया। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह ए रमणन करके ते फिर आज किथे पहुंचे हन? भाई साहब गुरदास जी।

बड़ा दुख होया मन में, बड़े क्रोधित होए। मन विच रिसक गनेरी खाई, आख्या ए कितरों आ गए हन। भगतियां पाई भगत आन, लोटा जोगी लिया छपाई, बाबा जानी जान पुरख कढ़िया लोटा जहा लुकाई। वेख चरित्र जोगी खुन साई, ए चरित्र वेख के योगियां ने बड़े मन विच क्रोध कीता। रास तारियां ने आके रास पाई, ते जो लोग खुश होके इन्हां नूं

फिर उदासियां वाला पेक बनाया ते हुण फिर संसारी कपड़े पहन के इत्थे बैठे हो। तुहाडा की धर्म है? भाई साहब गुरदास जी लिखदे हन, खादी खुणस जोगी सरा, गोश्त करन सबे उठ आई, पुछे जोगी पंगर नाथ, तोए दुध विच क्यों कांजी पाई, फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन, हाथ ना आई ते इस दा भाव की सी, आख्या पेख उतार उदास दा, वत क्यों संसारी रीत चलाई। उदासियां वाला साधुआं वाला पेख लहा के तू फिर संसारी कपड़े पा रहे हन, इस तो भाव है कि फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन, हाथ ना आई पेख उतार उदास दा, वत क्यों संसारी रीत चलाई। इसका जवाब दियो, धन गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिता, नानक